0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: ओके ओके ओके ओके ओके ओबेरुमो अपो कोई चुनवा उइन्ये उइन्ये